0: Even though physically absent, Guruji was inevitably the centre of all attention. A photobiography of Guruji's life was solemnly presented.
1: Swami ji, Mahatanand ji, Maharaj sahab to aaj hamare beech mein nahi hai kyunki wo swasth labh kar rahe hain aisa bataya gaya. Par unka sandesh hamare beech mein hai, aapke beech mein hai. Lambe samay tak kaise unhone wo kaam kiye jisse ki aatmik sukh mile, atma ko shanti mile, sadbhav ka vatavaran kayam ho. Ek lamba jeevan unhone bitaya aur kis prakar se ve समाज को, देश को, दुनिया को संदेश देते गए. ये सौभाग्य है पाली जिले का, देशुरी तहसील का और निप्पल गांव का, जहाँ वो पैदा हुए. उन्होंने महान संत स्वामी दीपनाथ जी की सानिध्य में रह के संकल्प किया और वही संकल्प संदेश के रूप में आज सबके सामने है.
2: टुडे विद अस large number of our foreign friends are also here. I would like to acknowledge their dedication to this institution. I welcome on behalf of all farmers here that looking to your devotion, it's really appreciable and it is amazing. It is beyond our thought and thinking.
3: So, बाबूजी मन से यहाँ हैं, तन से वहाँ हैं. गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, नशा पत्ता छोड़ो, जाति पाति का भेदभाव छोड़ो, सर्वधर्म का सम्मान करो, जिससे कि विश्व शांति बनी रहे, प्राणी मात्र की रक्षा हो और मानव का भी कल्याण हो. बोल श्री दीप नारायण भगवान की. धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी गुरुदेव की.
0: Today, our stay in India has come to an end. The heart of India is an ashram. An ashram is the home of the soul, and the soul of that home is a Gurudev. His word comes from an eternity and lasts for an eternity.
4: God is endless and His glory is endless. He is beyond

बोले श्रीदीप नारायण भगवान की जय, श्रीदेव पुरी जी महादेव की जय, श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय, स्वामी महेश्वरानंद जी विश्व गुरुदेव की जय हो।

0: तरक्की जय।
1: श्री भगवान की जय। श्री स्वामी लालानंद जी गुरुदेव की जय।

0: Sridip Narayan Bhagavan ki jai, Shri Satta Gurudeva ki jai.
1: Alak Puri Ji Mahadeva ki jai, Madhavanand Ji Bhagavan ki jai, Satya Sanatan Dharma मात पिता गुरुदेव की ओम शांति शांति शांति

0: ॐ बोले श्री दीपनारायण भगवान की जय श्री देवेश्वर महादेव
1: की जय
0: साई माधवानंद जी भगवान
1: की जय
0: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव

0: राम भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव
1: की जय।

ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यं ओम शांति शांति शांति। दीप नारायण भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय। माधव कृष्ण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।

देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की अलकपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान दीप नारायण भगवान सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति।

श्री श्री देव पुरी समादेव धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन ओम शांति शांति

0: देव पुरुष महादेव
1: जय।
0: ओम शांति
2: महामंडलेश्वर का स्वामी महेश्वर नाम गुरुदेव।

0: ॐ सोऽहं सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ॐ सोऽहं सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ॐ श्री अलकपुरी जी महादेवाय की जय हो। अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरी सा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महाशयानंद स्वामी जी गुरुदेव की जय।
0: Hey, where the air is going? Air is going from this side. Sure. Thank you. You can put it near Mahaprabhuji here, maybe. You here?
2: Yeah.
0: Oh, Mahaprabhuji, that's for you, very good. Okay? Yeah.

हे उद्धव हमें बता दो कि योग से वियोग, योग से वियोग, वियोग से योग बड़ा है. दिस इज कृष्णा. गोपीज वॉज द मैंसनिंग टू उद्धव जी. सो दैट इज इज अ लेसन फॉर ह्यूमन. दैट इज इज वॉट काइंड वी हैव इन आवर माइंड, आवर फीलिंग्स. मिनिमाइज ऑल द नेगेटिव थॉट्स, ऑल द डिस्टर्बेंस, ऑल द व्हाट कम कम इन द लाइक माइंड, एंड वी वॉश अवे आवर सेल्फ एंड वी क्लीन आवर सेल्फ. क्रिएट गुड थॉट, क्रिएट गुड हारमोनी एंड फ्रेंडशिप, फैमिली हारमोनी. एज वेल महाप्रभु जी ऑल्सो मेंशन इन द हिज नो गोल्डन जुबलीज और गोल्डन टैक्स, गोल्डन टीचिंग. रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स एज वेल योर मास्टर. लिव इन लव एंड हारमोनी विद योर फैमिली. दिस इज हाउ वॉज महाप्रभु जी गोल्डन टीचिंग वर्ड्स. सो शिव पुराणा इस इज ए इज अ ग्रेट ग्लोरी फॉर ह्यूमन. महाभारत इज गीता. इफ वी रीड देन इट कम. बट ए क्वेश्चन वॉज रियल और नॉट, डेट वॉज रियल. इफ यू नॉट बिलीव देन वी गो टू तक्षशिला नालंदा लाइब्रेरी एंड रीड देयर हाउ मैनी एंड थाउजेंड ऑफ इंडियन द स्क्रिप्चर्स एंड योगीज एंड वॉट कॉल्ड आवर कथा प्रीचिंग people day and night. Now you see Purana is mostly preaching now in India because now Shravan month. This is Shravan's month is dedicated to Lord Shiva, and also all the given mantra. Om.

की आराधी भगवान दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय।

0: जानकी अलकपुरी जी महादेव, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।